0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबेद।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामेईन को आदाब। जापान समेत दुनिया के अक्सर मुल्कों में फादर्स डे जून की तीसरे इतवार को मनाया जाता है। आज सब अब्बुओं के लिए नेक तमन्नाएं।
1: वाह, मई में मदर डे और जून में फादर्स डे।
0: जी जनाब, जापान में फादर्स डे को कहते हैं चीची नो ही।
1: मदर्स डे पर तो बच्चे इजहार तशक्कुर के लिए माओं को तोहफे देते हैं, कार्ड भेजते हैं। फादर डे पे वालिद साहिबान के लिए भला क्या होता है?
0: मेरा ख्याल है उनकी खिदमात पे सिर्फ खराज तहसीनी पेश कर देना काफ़ी होगा। वैसे हमारे पाको हिंद में तो फादर्स डे नहीं मनाया जाता, इसलिए मैंने उर्दू सर्विस की जापानी रुकन ह्योरी उराता साहिबा से उस बारे में पूछा तो कहती हैं, बचपन में फादर्स डे के मौके पर स्कूल में वो लोग अपने वालिद की तस्वीर बनाते, कोई मजमून या पैगाम लिख कर बतौर तोहफा देते, और वो कहती हैं कि तब फादर्स डे के आस पास जो इतवार आता था उसको स्कूल में ओपन डे होता ताकि वालिद हजरात क्लास देखने आ सकें। वो कहती हैं अब मुआशरे में ज्यादा समाजी तब्दीलियां आने से शायद हर स्कूल में ये पहले जैसा ना हो, लेकिन उनके लिए फादर्स डे की नुमाया तरीन याद यही है।
2: लेकिन मेरे ख्याल में हर इलाके के स्कूल का अपना अपना तरीका होता है। अच्छा खलील साहब, सुना है जापान में फादर्स डे का तसव्वुर अमरीका से आया था?
1: जी सोफिया साहिबा, सुनने में आया है कि अमेरिका से जापान में फादर्स डे का तसव्वुर लाने वाले जो साहब थे वो फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता थे।
0: जी, और जापान मेंस फैशन यूनिटी नामी तंजीम के मुताबिक ये साहब 1980 में न्यूयॉर्क में अमेरिका की फादर्स डे कौंसिल के डायरेक्टर से मिलने के बाद जापान आए तो उन्होंने फैसला किया कि वो एक निजी तंजीम फादर्स डे कौंसिल जापान कायम करेंगे, और यूं 1982 से जापान में बड़े पैमाने पर फादर्स डे मनाया जाने लगा और फादर्स डे येलो रिबन कैंपेन का बाकायदा आगाज हो गया।
1: सोफिया साहिबा, वसीमा साहिबा ने तो हमें तारीख पढ़ाना शुरू कर दी है।
2: अरे भाई, तारीख का लेक्चर रोकें और फादर्स डे पर बात कुछ देर के लिए मुलतवी करके सामईन के पैगामात की तरफ आएं।
0: जी सोफिया, तारीख का सबक लेना जरूरी है। मेरी अम्मी कहती थी हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़े बेवफा, रात को याद किया सुबह को सफा।
1: याद करें और फिर भूल जाएं।
0: जी, ये
1: तो याद रखिए कि अब सामीन के पैगामात का वक्त है। तो पहला पैगाम है मायरा अख्तर साहिबा का जापान के ओसाका से। मायरा साहिबा लिखती हैं कि मैं 28 मार्च 2026 को ओसाका में होने वाले पाकिस्तान कल्चरल फेस्टिवल में गई थी। वाकई बहुत अच्छा लगा। जापान की सुमो रेसलिंग और रिवायती सिंधी कुश्ती मुलाखड़ा को एक साथ देखना बड़ा दिलचस्प तजुर्बा था। बाकी कल्चरल परफॉर्मेंसेस ने भी माहौल को काफ़ी पुरजोश और रंगीन बना दिया। बतौर पाकिस्तानी दिल खुश हो गया कि हमारी सकाफत को इतने प्यारे अंदाज में दिखाया गया। बाद में NHK की उर्दू सर्विस पर इसके बारे में सुनकर लगा जैसे वो दिन फिर से याद आ गया हो।
2: मायरा अख्तर साहिबा, पैगाम का और प्रोग्राम को सराहने का शुक्रिया। हमें भी पहले तजस्सुस था कि ये मुकाबला कैसा होगा, लेकिन अच्छा रहा और अब आपकी राय सुनकर हमें भी और मज़ा आ रहा है।
0: बहुत मज़ा आया था, खूब रौनक थी। और खलील साहब, इस मुकाबले से पहले सुम्मो पहलवानों ने बड़े तहम्मुल से समझाया और मुलाखड़ा वाले मल पहलवानों ने इतने शौक से सीख कर भरपूर मुकाबला किया, पूरी जान

0: लड़ाई उनकी दोनों की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाकई काबिले तारीफ रही।
1: अच्छा तो अब आगे बढ़ते हैं, मेरे पास पैगाम है मुशर्रफ हुसैन शेख साहब का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। बरसों बीत गए NHK को हम पाबंदी से सुनना छोड़ चुके थे, लेकिन हमने NHK को याद रखा हुआ है। मैंने कुछ दिनों पहले ईमेल भेजी थी लेकिन जवाब मौसूल नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारी दिलचस्पी की कद्र करें, आपसे गुजारिश है कि फ़ोन पर रابطہ कायम करें। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी लिखा है।
0: जी मुशर्रफ साहब, पैगाम का बेहद शुक्रिया। NHK ने भी आपको याद रखा हुआ है, जैसे ही आपका पैगाम मिला उसको शामिल कर लिया है।
2: मुशर्रफ हुसैन साहब, हम आपकी दिलचस्पी की बहुत कदर करते हैं, उम्मीद है आइंदा मज़ीद तफसीली पैगाम भेजेंगे। हमारी वेबसाइट पर मौजूद दीगर सिलसिलों पर भी नज़र डालिए, अपनी राय रवाना कीजिए, हम मुंतज़िर हैं।
1: और मैं मुंतजर हूँ कि अब वसीमा साहिबा बताएं कि उनके घर में फादर डे कैसे मनाया जाता है।
2: अरे मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, उनके बचपन की बात याद आ रही है। तो जब अभी हमने बताया जैसे कि जापान में फादर्स डे जून की तीसरी इतवार होता है, तो बच्चे स्कूल में जो कार्ड बनाते हैं, उनके स्कूल में भी रवाज था कार्ड बनाने का, तो वो जुमे को ही ला के अब्बू को दे देते बंद लफाफा कि इसमें आपके लिए सरप्राइज है, इतवार को ही खोलिएगा।
0: प्यारे बच्चों की प्यारी बातें, और अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे मौसीकी।
2: आज का गीत है फुबोका यानी अम्मी और अब्बू का गीत। इसे पेश करने वाला ग्रुप है ग्रीन। फुकुशिमा प्रीफेक्चर में तश्कील पाने वाला ग्रुप ग्रीन चार गुलकारों पर मुश्तमिल है, हिदे, नावी, कुनी और सो।
0: ये सब अराकीन लाइसेंस याफ्ता डेंटिस्ट हैं, लेकिन वो अपने काम और तिब्बी देखभाल के दरमियान तवाजुन कायम रखने के लिए अपने चेहरे छुपाते हैं। उन्होंने सबसे पहले ग्रीन के नाम से डेब्यू किया, उसके बाद उन्होंने कई हिट गाने प्रोड्यूस किए
2: जैसे आई उता, किसे की, हारुका और ऑरेंज। किसे की अब भी जापान में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले सिंगल का 2015 का गिनीज रिकॉर्ड रखता है।
1: उन्होंने कई ऐसे गाने पेश किए जिन्हें जिंदगी की मुसर्रत के गीत समझा जा सकता है।
2: उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म किसे की अनोहीनो सोबितो की वजह से उनका तर्ज जिंदगी भी गुफ्तगू का मौजू बना।
0: ये फिल्म उनकी मौसीकी और कहानी दोनों पर मबनी थी। मार्च 2024 में उन्होंने ग्रुप का नाम ग्रीन से ग्रीन बॉयज में तब्दील कर दिया। लगता है कि उनकी नई सरगर्मियां मुस्तकबिल में बहुत तवज्जो का मरकज बनेंगी।
1: फुबोका गीत के बारे में बताते चलें कि ये बच्चों की परवरिश करने वाले वालदेन के शुक्रिया का गीत है। वालदेन जिनके लिए बच्चे बहुत मुश्किलात पैदा करते हैं, जैसे रात देर तक बाहर रहना और उन्हें तंग करना वगैरह,
0: लेकिन गुलकार के मुताबिक वो वाकई शुक्रगुजार हैं कि वालदेन ने उन्हें कबूल किया, और कहते हैं कि अब भी कभी कभार मैं उन्हें तंग करता हूँ और उन्हें परेशान करता रहता हूँ,
2: लेकिन कहते हैं मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा, आसपास के लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। फुबोका गीत के बोलों में है अम्मी अबू बहुत शुक्रिया, मैं अभी भी समझदार नहीं हुआ, लेकिन आपकी सारी मोहब्बत पास रखूंगा, जिंदगी में आगे बढ़ता रहूंगा। तो आइए सुनते हैं।

0: मिलकर बढ़ना
1: और तीसरे नंबर पर 70.1% की राय थी अपने साथी के साथ घर के कामों और बच्चों की देखभाल में बराबर शामिल होना। ये नतायज जाहिर करते हैं कि वो वालिद जो अपने बच्चों और शरीक हयात दोनों को बराबर समझें, खानदानी जिंदगी में फाल हिस्सा लें, वो बड़े काबिल इज्जत समझे जाते हैं।
2: दूसरी तरफ ज्यादा रिवायती पितरशाही खसूसियात जैसे घर के सरबराह के तौर पर वक़ार और इख्तियार का मुजाहरा करने की हिमायत की शरह सिर्फ 8.3% और एक मजबूत शख्सियत जो बच्चों के सामने कमजोरी जाहिर न करे को सिर्फ 4.5% यानी बहुत ही कम हिमायत मिली।
1: ये माशरे की तवक्कात का अक्कास है। ये सर्वे जो ख़ानदान के बारे में बदलते हुए नज़रियात के बारे में हमें जानकारी फ्राहम कर रहा है। तो ये थी सामिन जापान में फादर्स डे की दास्तान, कुली हमने बता दी ज़ाती तजर्बे भी और सर्वे भी। अब फिर सामिन के खतूत का रुख करते हैं।
0: पाकिस्तान से नईमा अशफाक लिखती हैं, आपके सारे प्रोग्राम ही बहुत अच्छे होते हैं और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। बहुत दुआएं ऐसे सब लोगों के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं इन तमाम मालूमात को हम तक पहुंचाने की खातिर।
2: पैगाम रवाना करने और हमारी मेहनत को सराहने का बेहद शुक्रिया नईमा साहिबा। वैसे आपस की बात है, सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं ही करता हूँ।
1: हाय हमारे सामने ही कह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। अच्छा, नईमा साहिबा ने हमारी हदायत पे मुकम्मल अमल किया लगता है और उनकी ईमेल हम तक बड़ी कामयाबी से पहुंची। अब हम बाकी सामिन को क्यों ना बताते चलें कि दीवान खाना में पैगाम राय या जो अब जापानी क्विज चल रहा है उसका जवाब भिजवाने का तरीका क्या है, तो बताते हैं तरीका।
0: अपने ब्राउजर में nhk.jp/urdu टाइप करके शोज ऑन डिमांड में जाकर दीवान खाना के पेज पर मेजबानों की थंबनेल तस्वीर के बाएं जानिब पैगामात यहां भेजें पर क्लिक करें।
1: यहां आपकी आरा के मुंतजिर हैं वाला फफा नमूदार होगा। इस तस्वीर के नीचे दी गई हदायत पढ़कर फॉर्म की तरफ बढ़ें। पर क्लिक करने से पहली रसाई पर रजामंदी की तस्दीक वाला पेज खुलेगा। यहाँ दर्ज हदायत पढ़कर आपने क्लिक करना है कबूल के ऑप्शन पर और आगे बढ़ने के लिए तीर के निशान पर क्लिक करने से हो सकता है नोट वाला पेज खुले।
2: ऐसे में मंदरजा बाला से मुत्तफिक मुंतखब करके बाएं जानिब वाले तीर के निशान पर क्लिक करने से खुलने वाले फॉर्म में आपको अपना उर्फी नाम यानी निक नेम, अपना ईमेल एड्रेस और पैगाम यानी मैसेज लिखना है। इन मालूमात को पूर करके पैगाम लिखने पर सवाल सामने आएगा कि क्या आप कोई वीडियो या तस्वीर भी भेजना चाहते हैं या सिर्फ तहरीरी पैगाम।
1: अगर सिर्फ तहरीरी पैगाम या मैसेज भेजना है यानी मैसेज भेजना है तो नहीं वाला ऑप्शन मुंतखब करके तीर के निशान पर क्लिक करने से पैगाम तरसील हो जाएगा।
0: लेकिन अगर खत लिखकर उसकी तस्वीर भेजनी है या कोई तस्वीर या वीडियो शेयर करनी हो तो हाँ वाला ऑप्शन मुंतखब करके आगे बने तीर के निशान पर क्लिक करें। नए सफ़े पर अपनी फाइल का उनवान लिखकर बाएं जाने वाले तीर पर क्लिक करें।
2: इस क्लिक से अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा। वहाँ फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीले रंग के सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से सक्सेस योर फाइल हैज़ बीन सबमिटेड का मैसेज आने पर कन्फर्म का ऑप्शन मुंतखब करके कम्प्लीट पर क्लिक कर दें।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बस इस क्लिक के बाद आपकी फाइल, आपका पैगाम या खत फौरन हम तक पहुंच जाएगा। हम इसे ज़रूर पढ़ेंगे और अगर मुनासिब हुआ तो दीवान खाना में शामिल भी करेंगे।
2: एक और तरीका भी है इस पेज पर आने का। अपने सर्च इंजन पर उर्दू हरूफ तहजी में लिखें हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं, तो सर्च में NHK का ये सफ़ा आपको मिल जाएगा।
1: और याद रखें कि उर्दू हरूफ तहजी में लिखना है, रोमन अल्फाज बिल्कुल नहीं लिख लें। अगर रोमन लिखेंगे तो आपको ये सफ़ा नहीं मिलेगा और अगर आप उर्दू पढ़ लिख नहीं सकते तो nhk.jp/urdu के तवज्जो से ही हमारे पास आना पड़ेगा। ज़रूर आइए, बार बार आइए, हम मुंतज़िर हैं, हमारी वेबसाइट मुंतज़िर है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। और हम मज़ीद आपको वजाहत करती चलूँ कि आप हमें तहरीरी पैगाम भिजवाने के साथ साथ हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu पर ऑडियो या वीडियो पैगाम भी भिजवा सकते हैं।
0: हमारे होम पेज का एड्रेस है nhk.jp/urdu।
1: अब हम आपसे इजाज़त लेंगे लेकिन आपको कहते चलेंगे कि हम आपके ढेरों पैगामात के मुंतजिर हैं। अपने मेज़बानों वसीमा आबिद, खलील शेराजी और सोफिया जमशेद को अब इजाज़त दीजिए।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानों का कोनिचिवा नमस्कार।
1: सभी साथियों को रंजना सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर है आपके पत्रों के जवाब और आओ पकाएं जापानी खाना।
0: रंजना जी, देखिए फुटबॉल विश्व कप की दीवानगी पूरी दुनिया में दिख रही है और जापान में तो इसका जोश आप समझ ही सकती हैं।
1: ये तो है, जापान की टीम का इतना बेहतरीन प्रदर्शन शायद ही कभी देखा हो। वो नॉकआउट राउंड में भी पहुंच गए।
0: अरे हाँ, ये तो है, खिलाड़ियों की वाहवाही तो हो ही रही है, साथ में जापानी फैंस भी आयोजन स्थल पर अपने व्यवहार से पूरी दुनिया का दिल जीत रहे हैं।
1: समझ गई, आपका इशारा स्वच्छता अभियान पर है ना। जापान के लोग मैच के बाद स्टेडियम में फैला कचरा उठा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे।
0: हाँ, हर जगह इसी नेक काम की चर्चा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आलोचना कर रहे हैं।
1: अच्छा, ऐसे लोग भी हैं? भला साफ सफाई के लिए कोई किसी की आलोचना कैसे कर सकता है?
0: हाँ, दरअसल कुछ लोगों ने इंटरनेट पर लिखा कि ये सब ढोंग है और दिखावा है, साफ सफाई की इतनी चिंता है तो अपने घरों में करें। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जापानी पुरुष घर के कामों में हाथ कम ही बटाते हैं।
1: लेकिन मैंने देखा है कि जापान में लोग अपना कूड़ा साथ ले जाते हैं, तो ये एक संस्कृति की तरह है और इसमें कोई बुराई तो नहीं?
0: बिल्कुल सही कहा। मैंने भी जब नकारात्मक टिप्पणियां देखी तो बात कुछ हजम नहीं हुई। बहरहाल चलते हैं आज के हमारे लक्ष्य की ओर और लेते हैं श्रोताओं के पत्र।
1: जी, तो सबसे पहले उठा रही हूँ ये पत्र जो राम कुमार नीरज जी का है, आरा बिहार से। लिखते हैं, मुझे भारत और जापान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को समझने में गहरी रुचि है। मैं इन विषयों को आत्मसात करने और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। इसी दिशा में मैंने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो तैयार किया है।
0: अरे हाँ, राम कुमार जी ने इसका उल्लेख पहले भी किया था।
1: जी, लिखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने परमाणु शक्ति के इतिहास, हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी और भारत के परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में मानवता के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मेरा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि लोगों को सोचने और संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित करना है। मैं भविष्य में भी भारत जापान संबंधों, सामाजिक मुद्दों और वैश्विक विषयों पर जागरूकता फैलाने का प्रयास करता रहूंगा।
0: राम कुमार जी, आपके प्रयास वाकई काबिले तारीफ हैं। दरअसल आपका पत्र मिलने के बाद मैंने खुद इसे देखा और जितने विस्तार से इसमें न केवल जापान बल्कि भारत के पोखरण परीक्षण के बारे में बताया गया है वो काफी ज्ञानवर्धक है। और अब देखिए, ये अगला पत्र है केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी का। लिखते हैं, आपके वेब पेज पर जापानी दल ने विकसित की आर्कटिक समुद्री बर्फ की मोटाई का अनुमान लगाने की विधि शीर्षक जानकारी पढ़ने को मिली, जो कि विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। जापानी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये नई विधि न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में भी एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। देखा जाए तो अब तक आर्कटिक समुद्री बर्फ की स्थिति का आकलन मुख्यतः उसके विस्तार के आधार पर किया जाता रहा है, जबकि उसकी वास्तविक मात्रा और स्थिति को समझने के लिए मोटाई का सटीक अनुमान लगाना भी उतना ही आवश्यक है। मेरी राय में इस चुनौती का समाधान खोजते हुए जापानी शोधकर्ताओं ने उपग्रह आंकड़ों, मौसम संबंधी जानकारी तथा बर्फ की गति के विश्लेषण को एक साथ जोड़कर एक अभिनव पद्धति विकसित की है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये शोध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभावों को सबसे पहले और सबसे तीव्र रूप में अनुभव कर रहा है। समुद्री बर्फ की मोटाई में होने वाले सूक्ष्म बदलावों का समय रहते पता लगाना भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उनके प्रति नीतिगत निर्णय लेने में सहायक होगा। यदि ये तकनीक व्यापक स्तर पर अपनाई जाती है तो बेशक ये ग्लोबल वार्मिंग संबंधी अध्ययनों की सटीकता बढ़ाने के साथ साथ समुद्री बर्फ में कमी के शुरुआती संकेतों की पहचान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: सुरेश जी, लगता है आपको इस विषय में की काफी जानकारी है, नहीं तो इतनी गहराई तक इस खबर का विश्लेषण कर पाना संभव नहीं। आपने काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है और आशा करते हैं कि जापान का यह शोध आगे चलकर इस पृथ्वी को बचाने में अहम योगदान देगा।
0: सही में सुरेश जी की इस क्षेत्र में काफी दिलचस्पी भी लगती है। हर सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, तभी समस्त मुद्दों को समझा जा सकेगा।
1: जी, अब ये अगला पत्र है पथिक जैन जी का जयपुर से। लिखते हैं, जापान में ऑटो रिक्शा के अंक को सुनकर ऐसा लगा कि अब जापान भी भारत के और निकट आ रहा है। जापान में पिछली शताब्दी के 5वें दशक में ऑटो रिक्शा चलते थे और अब लगभग 7 दशक बाद पुनः लौट रहे हैं। इसे समय की मांग कह सकते हैं, जहां महंगी कारें, सड़कों पर यातायात की भीड़ आदि को देखते हुए ऑटो रिक्शा कम दूरी के लिए परिवार के साथ घूमने में दक्षिण एशिया में लोकप्रिय है। होरिकोशी जी के ऑटो का आधा भूरा रंग और ऊपर का भाग क्रीम रंग का, जो ऐसा लगता है जैसे कॉफी के ऊपर क्रीम और झाग हो, आकर्षक रंग लगा।
0: पथिक जी, टिप्पणी के लिए धन्यवाद। जापान में साइकिल का भी बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर मौसम खराब हो और बच्चों को लाना ले जाना हो तो ऐसे समय में ये ऑटो काफी सुविधाजनक हो सकता है। मेंटेनेंस भी कम है। साइकिल से तो बेशक महंगा है, लेकिन कार रखने की तुलना में सस्ता है।
1: जी, फेसबुक पर भी कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उमेश कुमार शर्मा जी कहते हैं, जापान में भी ऑटो होता है ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने हमें चालक महोदया से मिलवाया, मिलकर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने हिंदी में आपसे बात की, ये जानकर आश्चर्य भी हुआ।
0: उमेश जी, होरिकोशी जी हमारी हिंदी सेवा की ही सदस्य हैं और वे धारा प्रवाह हिंदी बोलती हैं। भारत में भी रह चुकी हैं, इसलिए भी उन्हें ऑटो रिक्शा से लगाव है। और देखिए रंजना जी, कई और श्रोताओं ने भी इस रिपोर्ट को फेसबुक पर सराहा है, तो क्यों ना उनके नाम ले लेते हैं। ये हैं हेमराज, नवीन शर्मा, राघवेंद्र नौटियाल, लाल बाबू पांडे, मृणालिका ओझा, अशोक मोजित्रा, राजेश गिरी, मुरारी शाह। और विजय सुरलकर जी ने लिखा था कि वे जरूर सुनेंगे, तो उम्मीद करते हैं आपने सुन लिया होगा। आप सबका दिल से आभार।
1: अब देखिए दुर्गेश नागनपुरे जी का पत्र है, जिसमें उन्होंने 21 जून 2026 के

0: आज हम बनाना सिखाएंगे माकी सुशी, यानी सुशी के रोल।
1: और ये व्यंजन सिखाने के लिए आज भी हमारे साथ हैं पाकला विशेषज्ञ अकिको वातानाबे।
2: कोन्निचिवा, वातानाबे अकिको देसु। क्यों गो शोकाई सुरु माकी सुशी वा कोराकुची नी ओबेंटो तोशिते मोत्ते।
0: नमस्कार, मैं हूँ अकिको वातानाबे। आज हम बनाएंगे माकी सुशी, यानी सुशी के रोल। किंडरगार्टन या स्कूल में बच्चों का पहला दिन मनाने के लिए अक्सर ये व्यंजन बनाया जाता है, या फिर बाहर खाने के लिए लंच का डिब्बा ले जाना हो तो भी ये व्यंजन बढ़िया है। इसे बनाने के लिए सब्जियों, मछली और दूसरी सामग्री को चावल की परत और नोरी यानी सूखी समुद्री घास में लपेटते हैं। आज हम डिब्बा बंद ट्यूना मछली, सब्जियों और तामागो याकी ऑमलेट का इस्तेमाल करके सुशी के रोल तैयार करेंगे।
1: ये व्यंजन हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो सामग्री नोट कर लीजिए।
0: पहले सुशी मेशी, यानी सिरके वाले चावल बनाने की सामग्री। आपको चाहिए 300 ग्राम चावल, 2 कप या 400 मिलीलीटर पानी, और सुशी का सिरका बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच सिरका, 2 बड़े चम्मच चीनी और 1 छोटा चम्मच नमक।
1: अब नोट कर लीजिए सुशी रोल के अंदर बनने की सामग्री।
0: इसके लिए तैयार रखिए 100 ग्राम गाजर और उसे सिमसिमाते समय डालने के लिए 2 बड़े चम्मच चीनी, 1/4 छोटा चम्मच नमक और 1 कप या 200 मिलीलीटर पानी।
1: ऑमलेट के लिए आपको चाहिए 2 अंडे, 1 बड़ा चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक, 1/2 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच पानी और पकाने के लिए 1 छोटा चम्मच तेल।
0: इसके अलावा हमें चाहिए 1 खीरा, 70 ग्राम डिब्बा बंद ट्यूना मछली और सूखी समुद्री घास यानी नोरी की 4 परतें जो 20 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई वाले चौकोर टुकड़ों में कटी हुई हों।
1: तो चाहिए अब व्यंजन बनाना शुरू करते हैं। पहले हम सिरके वाले चावल तैयार करेंगे।
0: चावल पहले से पका कर रखिए।
1: अब सुशी के सिरका बनाएंगे। 1/4 देगूची में 3 बड़े चम्मच सिरका, 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह मिलाइए। उसके बाद लगभग 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक डोंगे में ताज़ा पके चावल डालिए और इस पर सब जगह समान रूप से सुशी का सिरका डाल दीजिए।
0: सुशी का सिरका हमें गर्मा गर्म ताज़ा पके चावलों पर डालना है। अगर चावल ठंडे हो गए तो वो सिरका नहीं सोखेंगे।
1: चावल पर सुशी का सिरका डालने के बाद दोनों चीजों को जल्दी जल्दी मिलाइए।
0: सुशी के सिरके को 1-2 मिनट तक जल्दी जल्दी चावल में मिलाइए। इससे ज्यादा देर मिलाने से चावल के दाने टूटने लगेंगे।
1: जब सिरका सारे चावलों में लग जाए तब पंखे से हवा करके चावलों को ठंडा कर लीजिए।
0: अब सिरके वाले इन चावलों को 4 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए।
1: इसके बाद बारी है सुशी रोल में भरने वाली सामग्री बनाने की।
0: तो पहले गाजर छील लीजिए और फिर उनके पतले लंबे टुकड़े इस तरह काटिए कि हर टुकड़े का व्यास लगभग 1 सेंटीमीटर हो।
1: गाजर के टुकड़ों को 1 देगुची में रखिए, 200 मिलीलीटर पानी डालिए और मध्यम आंच पर रख दीजिए।
0: जब पानी उबलने लगे तब आंच कम कर दीजिए और ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकने दीजिए। 5 मिनट बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी और 1/4 छोटा चम्मच नमक मिलाइए। अब डेगची पर फिर से ढक्कन लगाकर और 7 मिनट तक पकने दीजिए।
1: 7 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए और गाजर के टुकड़ों को ठंडा होने दीजिए। इससे वो पानी का जायका सोख लेंगे।
0: इसके बाद हम तमागो याकी ऑमलेट बनाएंगे। तो पहले 1 डोंगे में 1 बड़ा चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक, 1/2 छोटा चम्मच सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच पानी लेकर अच्छी तरह मिला लीजिए।
1: फिर एक अलग डोंगे में अंडे तोड़ लीजिए और उन्हें अच्छी तरह फेंट लीजिए।
0: अंडे फेंटते समय ज्यादा झाग बनाए बिना सफेदी और जर्दी को मिलाने की कोशिश कीजिए। अगर आप फेंटने के लिए चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके सिरों को बाईं से दाईं ओर आगे पीछे हिलाइए। इससे अच्छा मिश्रण तैयार हो जाएगा।

0: इसके बाद वो सामग्री अंडे में मिला दीजिए जो हमने पहले मिलाकर रखी थी।
1: अब एक फ्राइंग पैन को मध्यम आंच पर गर्म कीजिए और उसमें एक छोटा चम्मच तेल सब जगह समान रूप से फैला लीजिए।
0: फिर अंडे का सारा मिश्रण एक साथ डाल दीजिए और जल्दी जल्दी चलाते जाइए।
1: जब अंडे का मिश्रण कुछ हद तक पक जाए तब फ्राइंग पैन का हत्था पकड़कर उसे अपने से दूसरी तरफ को झुकाइए ताकि अंडा दूसरे सिरे की ओर फिसल जाए। फिर इसे ऑमलेट की आकृति दे दीजिए और आंच कम करके अच्छी तरह पका लीजिए।
0: जब ऑमलेट ठंडा हो जाए तब उसके 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले लंबे पतले टुकड़े कर लीजिए।
1: इसके बाद खीरे की बारी। खीरे को भी गाजर और ऑमलेट की तरह पतले लंबे टुकड़ों में काट लीजिए।
0: अब डिब्बा बंद ट्यूना मछली को डिब्बे से निकाल कर एक छलनी में डाल दीजिए और उसका पानी जलने दीजिए। इसके साथ ही सुशी रोल में भरने की सारी सामग्री तैयार है।
1: अब आया इस व्यंजन का सबसे ज़रूरी हिस्सा। तो पहले से कुछ चीज़ें तैयार रखिए। हमें चाहिए एक डोंगा पानी, एक साफ तौलिया और एक माकिसु यानी सुशी रोल बनाने की बांस की छोटी चटाई।
0: तो पहले चटाई या कपड़े पर नोरी यानी सूखी समुद्री घास की एक परत रखिए। नोरी की चमकीली सतह नीचे की तरफ होनी चाहिए।
1: इसके बाद नोरी पर सिरके वाले चावल बिछाएंगे।
0: अब सिरके वाले चावलों के 4 हिस्सों में से एक उठाइए और उसे नोरी पर रख दीजिए।
1: चावलों को नोरी पर समान रूप से फैलाना जरूरी है।
0: सिरके वाले चावल नोरी पर फैलाने के बाद उस पर बाकी सामग्री रखेंगे।
1: सारी सामग्री सिरके वाले चावलों के बीचों बीच कतार से रखनी है
0: और नरम सामग्री पहले रखनी है। चावल के बीचों बीच बाईं से दाईं तरफ चूना मछली की 1 सेंटीमीटर मोटी कतार बनाइए और फिर उसके बगल में ऑमलेट के टुकड़ों की कतार रखिए।
1: मछली और अंडे के ऊपर रख दीजिए गाजर और खीरे की कतारें और अब बारी इन्हें नोरी में लपेटने की।
0: सुशी बनाने की छताई या कपड़े को अपने पास वाली सिला दोनों अंगूठों से पकड़कर उठाइए।
1: बाकी उंगलियों से सामग्री को अच्छी तरह पकड़े रहिए और फिर चटाई का अपने पास वाला सिरा दूर वाले सिरे के ऊपर ढक दीजिए। इससे चावल भरी नोरी का बेलनाकार रोल बन जाएगा।
0: रोल को थोड़ा आगे पीछे हिलाकर उसकी आकृति ठीक कर लीजिए।
1: जहां नोरी के दोनों सिरे मिलते हैं उस हिस्से को नीचे की ओर रखिए।
0: अब हर रोल को 8 बराबर गोल टुकड़ों में काट लीजिए।
1: दोनों तरफ से सुशी के अंदर भरी सामग्री का सुंदर लाल पीला और हरा रंग दिखाई दे रहा होगा।
0: लीजिए माकी सुशी तैयार है।
2: माकी सुशी इकागा देशिता का? नोरी गा टे नी हाइरानाई बाई वा तमागो याकी ओ।
1: तो दोस्तों, क्या आप ये सुशी रोल अपनी रसोई में बनाकर देखना चाहेंगे? अगर आपके पास नोरी ना हो तो आप पतला ऑमलेट बनाकर उसमें भी सारी सामग्री लपेट सकते हैं। ऐसे रोल भी स्वादिष्ट लगते हैं और इनके लिए ऑमलेट आप तमागो याकी ऑमलेट वाले मिश्रण से बना सकते हैं। तो ये व्यंजन ज़रूर बनाकर देखिएगा। इन्हें आप आसानी से पार्टी या दूसरे आयोजनों में ले जा सकते हैं और बिना हाथ गंदे किए मज़े से खा सकते हैं।
3: रंजना जी, माकी सुशी बनाने में काफी जटिल है, लेकिन इसमें पसंदीदा सामग्री डाल के अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं ना?
4: हाँ, मैं तो केवल खीरा डाल के ही बना लेती हूँ।
3: अच्छा, हाँ, खीरे वाली तो अच्छी है ना, गर्मियों में खासकर बहुत अच्छी है। और देखिए, आज के कार्यक्रम में नीमी जी की आवाज सुनी ना, कितने सालों बाद और वो भी इस समय अपने सपने को साकार करने की दिशा में व्यस्त है ना
4: जी।
3: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम और अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। फिर होगी मुलाकात, तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
4: और रंजना सिंह को।
3: सायोनारा, नमस्कार।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानो का कोनिचिवा नमस्कार।
1: सभी साथियों को रंजना सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर है आपके पत्रों के जवाब और आओ पकाएं जापानी खाना।
0: रंजना जी, देखिए फुटबॉल विश्व कप की दीवानगी पूरी दुनिया में दिख रही है और जापान में तो इसका जोश आप समझ ही सकती हैं।
1: ये तो है, जापान की टीम का इतना बेहतरीन प्रदर्शन शायद ही कभी देखा हो। वो नॉकआउट राउंड में भी पहुंच गए।
0: अरे हाँ, ये तो है, खिलाड़ियों की वाहवाही तो हो ही रही है, साथ में जापानी फैंस भी आयोजन स्थल पर अपने व्यवहार से पूरी दुनिया का दिल जीत रहे हैं।
1: समझ गई, आपका इशारा स्वच्छता अभियान पर है ना। जापान के लोग मैच के बाद स्टेडियम में फैला कचरा उठा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे।
0: हाँ, हर जगह इसी नेक काम की चर्चा है, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आलोचना कर रहे हैं।
1: अच्छा, ऐसे लोग भी हैं? भला साफ सफाई के लिए कोई किसी की आलोचना कैसे कर सकता है?
0: हाँ, दरअसल कुछ लोगों ने इंटरनेट पर लिखा कि ये सब ढोंग है और दिखावा है, साफ सफाई की इतनी चिंता है तो अपने घरों में करें। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जापानी पुरुष घर के कामों में हाथ कम ही बटाते हैं।
1: लेकिन मैंने देखा है कि जापान में लोग अपना कूड़ा साथ ले जाते हैं, तो ये एक संस्कृति की तरह है और इसमें कोई बुराई तो नहीं?
0: बिल्कुल सही कहा, मैंने भी जब नकारात्मक टिप्पणियां देखी तो बात कुछ हजम नहीं हुई। बहरहाल चलते हैं आज के हमारे लक्ष्य की ओर और लेते हैं श्रोताओं के पत्र।
1: जी, तो सबसे पहले उठा रही हूँ ये पत्र जो राम कुमार नीरज जी का है, आरा बिहार से। लिखते हैं, मुझे भारत और जापान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को समझने में गहरी रुचि है। मैं इन विषयों को आत्मसात करने और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसी दिशा में मैंने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो तैयार किया है।
0: अरे हाँ, राम कुमार जी ने इसका उल्लेख पहले भी किया था।
1: जी, लिखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने परमाणु शक्ति के इतिहास, हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी और भारत के परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में मानवता के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मेरा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि लोगों को सोचने और संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित करना है। मैं भविष्य में भी भारत जापान संबंधों, सामाजिक मुद्दों और वैश्विक विषयों पर जागरूकता फैलाने का प्रयास करता रहूंगा।
0: राम कुमार जी, आपके प्रयास वाकई काबिले तारीफ हैं। दरअसल आपका पत्र मिलने के बाद मैंने खुद इसे देखा और जितने विस्तार से इसमें न केवल जापान बल्कि भारत के पोखरण परीक्षण के बारे में बताया गया है वो काफी ज्ञानवर्धक है। और अब देखिए, ये अगला पत्र है केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी का। लिखते हैं, आपके वेब पेज पर जापानी दल ने विकसित की आर्कटिक समुद्री बर्फ की मोटाई का अनुमान लगाने की विधि शीर्षक जानकारी पढ़ने को मिली, जो कि विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। जापानी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये नई विधि न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में भी एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। देखा जाए तो अब तक आर्कटिक समुद्री बर्फ की स्थिति का आकलन मुख्यतः उसके विस्तार के आधार पर किया जाता रहा है, जबकि उसकी वास्तविक मात्रा और स्थिति को समझने के लिए मोटाई का सटीक अनुमान लगाना भी उतना ही आवश्यक है। मेरी राय में इस चुनौती का समाधान खोजते हुए जापानी शोधकर्ताओं ने उपग्रह आंकड़ों, मौसम संबंधी जानकारी तथा बर्फ की गति के विश्लेषण को एक साथ जोड़कर एक अभिनव पद्धति विकसित की है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये शोध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभावों को सबसे पहले और सबसे तीव्र रूप में अनुभव कर रहा है। समुद्री बर्फ की मोटाई में होने वाले सूक्ष्म बदलावों का समय रहते पता लगाना भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उनके प्रति नीतिगत निर्णय लेने में सहायक होगा। यदि ये तकनीक व्यापक स्तर पर अपनाई जाती है तो बेशक ये ग्लोबल वार्मिंग संबंधी अध्ययनों की सटीकता बढ़ाने के साथ साथ समुद्री बर्फ में कमी के शुरुआती संकेतों की पहचान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: सुरेश जी, लगता है आपको इस विषय में की काफी जानकारी है, नहीं तो इतनी गहराई तक इस खबर का विश्लेषण कर पाना संभव नहीं। आपने काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है और आशा करते हैं कि जापान का यह शोध आगे चलकर इस पृथ्वी को बचाने में अहम योगदान देगा।
0: सही में सुरेश जी की इस क्षेत्र में काफी दिलचस्पी भी लगती है। हर सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, तभी समस्त मुद्दों को समझा जा सकेगा।
1: जी, अब ये अगला पत्र है पथिक जैन जी का, जयपुर से। लिखते हैं, जापान में ऑटो रिक्शा के अंक को सुनकर ऐसा लगा कि अब जापान भी भारत के और निकट आ रहा है। जापान में पिछली शताब्दी के 5वें दशक में ऑटो रिक्शा चलते थे और अब लगभग 7 दशक बाद पुनः लौट रहे हैं। इसे समय की मांग कह सकते हैं, जहां महंगी कारें, सड़कों पर यातायात की भीड़ आदि को देखते हुए ऑटो रिक्शा कम दूरी के लिए परिवार के साथ घूमने में दक्षिण एशिया में लोकप्रिय है। होरिकोशी जी के ऑटो का आधा भूरा रंग और ऊपर का भाग क्रीम रंग का, जो ऐसा लगता है जैसे कॉफी के ऊपर क्रीम और झाग हो, आकर्षक रंग लगा।
0: पथिक जी, टिप्पणी के लिए धन्यवाद। जापान में साइकिल का भी बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर मौसम खराब हो और बच्चों को लाना ले जाना हो तो ऐसे समय में ये ऑटो काफी सुविधाजनक हो सकता है। मेंटेनेंस भी कम है, साइकिल से तो बेशक महंगा है लेकिन कार रखने की तुलना में सस्ता है।
1: जी, फेसबुक पर भी कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उमेश कुमार शर्मा जी कहते हैं, जापान में भी ऑटो होता है ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने हमें चालक महोदया से मिलवाया, मिलकर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने हिंदी में आपसे बात की, ये जानकर आश्चर्य भी हुआ।
0: उमेश जी, होरिकोशी जी हमारी हिंदी सेवा की ही सदस्य हैं और वे धारा प्रवाह हिंदी बोलती हैं। भारत में भी रह चुकी हैं, इसलिए भी उन्हें ऑटो रिक्शा से लगाव है। और देखिए रंजना जी, कई और श्रोताओं ने भी इस रिपोर्ट को फेसबुक पर सराहा है, तो क्यों ना उनके नाम ले लेते हैं। ये हैं हेमराज, नवीन शर्मा, राघवेंद्र नौटियाल, लाल बाबू पांडे, मृणालिका ओझा, अशोक मोजित्रा, राजेश गिरी, मुरारी शाह। और विजय सुरलकर जी ने लिखा था कि वे जरूर सुनेंगे, तो उम्मीद करते हैं आपने सुन लिया होगा। आप सबका दिल से आभार।
1: अब देखिए, दुर्गेश नागनपुरे जी का पत्र है, जिसमें उन्होंने 21 जून 2026 के चैरी के देशसे के बारे में लिखा है कि इस कार्यक्रम में योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी मियोको जी से बातचीत और श्रोताओं के पत्रों के उत्तर बहुत ही मनभावन लगे।
0: दुर्गेश जी, धन्यवाद सुनने के लिए और हमें लिखने के लिए।
1: श्रोताओं, अब पेश है आओ पकाए जापानी खाना, जिसमें आज हम बनाना सीख रहे हैं माकी सुशी, यानी सुशी के रोल।
2: दोस्तों, स्वागत है आपका आओ पकाएं जापानी खाना कार्यक्रम में।

0: और नोरी यानी सूखी समुद्री घास में लपेटते हैं। आज हम डिब्बा बंद ट्यूना मछली, सब्जियों और तामागो याकी ऑमलेट का इस्तेमाल करके सुशी के रोल तैयार करेंगे।
1: ये व्यंजन हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो सामग्री नोट कर लीजिए।
0: पहले सुशी मेशी यानी सिरके वाले चावल बनाने की सामग्री। आपको चाहिए 300 ग्राम चावल, 2 कप या 400 मिलीलीटर पानी और सुशी का सिरका बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच सिरका, 2 बड़े चम्मच चीनी और 1 छोटा चम्मच नमक।
1: अब नोट कर लीजिए सुशी रोल के अंदर बनने की सामग्री।
0: इसके लिए तैयार रखिए 100 ग्राम गाजर और उसे सिमसिमाते समय डालने के लिए 2 बड़े चम्मच चीनी, 1/4 छोटा चम्मच नमक और 1 कप या 200 मिलीलीटर पानी।
1: ऑमलेट के लिए आपको चाहिए 2 अंडे, 1 बड़ा चम्मच चीनी, सुखी भर नमक, 1/2 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच पानी और पकाने के लिए 1 छोटा चम्मच तेल।
0: इसके अलावा हमें चाहिए 1 खीरा, 70 ग्राम डिब्बा बंद ट्यूना मछली और सूखी समुद्री घास यानी नोरी की 4 परतें जो 20 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई वाले चौकोर टुकड़ों में कटी हुई हों।
1: तो चाहिए अब व्यंजन बनाना शुरू करते हैं। पहले हम सिरके वाले चावल तैयार करेंगे।
0: चावल पहले से पका कर रखिए।
1: अब सुशी के सिरका बनाएंगे। 1/4 देगूची में 3 बड़े चम्मच सिरका, 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह मिलाइए। उसके बाद लगभग 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक डोंगे में ताज़ा पके चावल डालिए और इस पर सब जगह समान रूप से सुशी का सिरका डाल दीजिए।
2: सुशी को आसे रु टोकी नी वा कनाज़ गोहान गा अच्छी जोताई नी शिनाई तो इकेमसेन।
0: सुशी का सिरका हमें गर्मा गर्म ताज़ा पके चावलों पर डालना है। अगर चावल ठंडे हो गए तो वो सिरका नहीं सोखेंगे।
1: चावल पर सुशी का सिरका डालने के बाद दोनों चीजों को जल्दी जल्दी मिलाइए।
0: सुशी के सिरके को 1-2 मिनट तक जल्दी जल्दी चावल में मिलाइए। इससे ज्यादा देर मिलाने से चावल के दाने टूटने लगेंगे।
1: जब सिरका सारे चावलों में लग जाए तब पंखे से हवा करके चावलों को ठंडा कर लीजिए।
0: अब सिरके वाले इन चावलों को 4 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए।
1: इसके बाद बारी है सुशी रोल में भरने वाली सामग्री बनाने की।
0: तो पहले गाजर छील लीजिए और फिर उनके पतले लंबे टुकड़े इस तरह काटिए कि हर टुकड़े का व्यास लगभग 1 सेंटीमीटर हो।
1: गाजर के टुकड़ों को 1 देगुची में रखिए, 200 मिलीलीटर पानी डालिए और मध्यम आंच पर रख दीजिए।
0: जब पानी उबलने लगे तब आंच कम कर दीजिए और ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकने दीजिए। 5 मिनट बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी और 1/4 छोटा चम्मच नमक मिलाइए। अब डेगची पर फिर से ढक्कन लगाकर और 7 मिनट तक पकने दीजिए।
1: 7 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए और गाजर के टुकड़ों को ठंडा होने दीजिए। इससे वो पानी का जायका सोख लेंगे।
0: इसके बाद हम तमागो याकी ऑमलेट बनाएंगे। तो पहले 1 डोंगे में 1 बड़ा चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक, 1/2 छोटा चम्मच सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच पानी लेकर अच्छी तरह मिला लीजिए।
1: फिर एक अलग डोंगे में अंडे तोड़ लीजिए और उन्हें अच्छी तरह फेंट लीजिए।
0: अंडे फेंटते समय ज्यादा झाग बनाए बिना सफेदी और जर्दी को मिलाने की कोशिश कीजिए। अगर आप फेंटने के लिए चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके सिरों को बाईं से दाईं ओर आगे पीछे हिलाइए। इससे अच्छा मिश्रण तैयार हो जाएगा।
1: इसके बाद वो सामग्री अंडे में मिला दीजिए जो हमने पहले मिलाकर रखी थी।
0: अब एक फ्राइंग पैन को मध्यम आंच पर गर्म कीजिए और उसमें 1 छोटा चम्मच तेल सब जगह समान रूप से फैला लीजिए।
1: फिर अंडे का सारा मिश्रण एक साथ डाल दीजिए और जल्दी जल्दी चलाते जाइए।
0: जब अंडे का मिश्रण कुछ हद तक पक जाए तब फ्राइंग पैन का हत्था पकड़कर उसे अपने से दूसरी तरफ को झुकाइए ताकि अंडा दूसरे सिरे की ओर फिसल जाए। फिर इसे ऑमलेट की आकृति दे दीजिए और आंच कम करके अच्छी तरह पका लीजिए।
1: जब ऑमलेट ठंडा हो जाए तब

0: इसके एक सेंटीमीटर मोटाई वाले लंबे पतले टुकड़े कर लीजिए।
1: इसके बाद खीरे की बारी। खीरे को भी गाजर और ऑमलेट की तरह पतले लंबे टुकड़ों में काट लीजिए।
0: अब डिब्बा बंद ट्यूना मछली को डिब्बे से निकाल कर एक छलनी में डाल दीजिए और उसका पानी जलने दीजिए। इसके साथ ही सूची रोल में भरने की सारी सामग्री तैयार है।
1: अब आया इस व्यंजन का सबसे जरूरी हिस्सा। तो पहले से कुछ चीजें तैयार रखिए। हमें चाहिए एक डोंगा पानी, एक साफ तौलिया और एक माकिसू यानी सुशी रोल बनाने की बांस की छोटी चटाई।
0: तो पहले चटाई या कपड़े पर नोरी यानी सूखी समुद्री घास की एक परत रखिए। नोरी की चमकीली सतह नीचे की तरफ होनी चाहिए।
1: इसके बाद नोरी पर सिरके वाले चावल बिछाएंगे।
0: अब सिरके वाले चावलों के चार हिस्सों में से एक उठाइए और उसे नोरी पर रख दीजिए।
2: 大事なのはご飯が平らに海苔に乗っていることです。ご飯が少ない。
1: चावलों को नोरी पर समान रूप से फैलाना जरूरी है।
0: सिरके वाले चावल नोरी पर फैलाने के बाद उस पर बाकी सामग्री रखेंगे।
1: सारी सामग्री सिरके वाले चावलों के बीचों बीच कतार से रखनी है
0: और नरम सामग्री पहले रखनी है। चावल के बीचों बीच बाईं से दाईं तरफ चूना मछली की एक सेंटीमीटर मोटी कतार बनाइए और फिर उसके बगल में ओमलेट के टुकड़ों की कतार रखिए।
1: मछली और अंडे के ऊपर रख दीजिए गाजर और खीरे की कतारें और अब बारी इन्हें नोरी में लपेटने की।
0: सुशी बनाने की चटाई या कपड़े को अपने पास वाली सिला दोनों अंगूठों से पकड़कर उठाइए।
1: बाकी उंगलियों से सामग्री को अच्छी तरह पकड़े रहिए और फिर चटाई का अपने पास वाला सिरा दूर वाले सिरे के ऊपर ढक दीजिए। इससे चावल भरी नोरी का बेलनाकार रोल बन जाएगा।
0: रोल को थोड़ा आगे पीछे हिलाकर उसकी आकृति ठीक कर लीजिए।
1: जहां नोरी के दोनों सिरे मिलते हैं उस हिस्से को नीचे की ओर रखिए।
0: अब हर रोल को 8 बराबर गोल टुकड़ों में काट लीजिए।
1: दोनों तरफ से सुशी के अंदर भरी सामग्री का सुंदर लाल पीला और हरा रंग दिखाई दे रहा होगा।
0: लीजिए माकी सुशी तैयार है।
2: माकी सुशी इकागा देशिता का? नोरी गा ते नी हाइरानाई बाई वा तमागो याकी ओ।
1: तो दोस्तों, क्या आप ये सुशी रोल अपनी रसोई में बनाकर देखना चाहेंगे? अगर आपके पास नोरी ना हो तो आप पतला ऑमलेट बनाकर उसमें भी सारी सामग्री लपेट सकते हैं। ऐसे रोल भी स्वादिष्ट लगते हैं और इनके लिए ऑमलेट आप तमागो याकी ऑमलेट वाले मिश्रण से बना सकते हैं। तो ये व्यंजन ज़रूर बनाकर देखिएगा। इन्हें आप आसानी से पार्टी या दूसरे आयोजनों में ले जा सकते हैं और बिना हाथ गंदे किए मज़े से खा सकते हैं।
3: रंजना जी, माकी सुशी बनाने में काफी जटिल है, लेकिन इसमें पसंदीदा सामग्री डाल के अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं ना?
4: हाँ, मैं तो केवल खीरा डाल के ही बना लेती हूँ।
3: अच्छा, हाँ, खीरे वाली तो अच्छी है ना। हाँ, गर्मियों में खासकर हाँ, बहुत अच्छी है। और देखिए, आज के कार्यक्रम में नीमी जी की आवाज सुनी ना, कितने सालों बाद और वो भी इस समय अपने सपने को साकार करने की दिशा में व्यस्त है ना
4: जी।
3: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम और अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। फिर होगी मुलाकात, तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
4: और रंजना सिंह को।
3: सायनारा, नमस्कार।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानों का कोनिचिवा नमस्कार।
1: सभी साथियों को रंजना सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर है आपके पत्रों के जवाब और आओ पकाएं जापानी खाना।
0: रंजना जी, देखिए फुटबॉल विश्व कप की दीवानगी पूरी दुनिया में दिख रही है और जापान में तो इसका जोश आप समझ ही सकती हैं।
1: ये तो है, जापान की टीम का इतना बेहतरीन प्रदर्शन शायद ही कभी देखा हो। वो नॉकआउट राउंड में भी पहुंच गए।
0: अरे हाँ, ये तो है, खिलाड़ियों की वाहवाही तो हो ही रही है, साथ में जापानी

0: फैंस भी आयोजन स्थल पर अपने व्यवहार से पूरी दुनिया का दिल जीत रहे हैं।
1: समझ गई, आपका इशारा स्वच्छता अभियान पर है ना? जापान के लोग मैच के बाद स्टेडियम में फैला कचरा उठा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे।
0: हाँ, हर जगह इसी नेक काम की चर्चा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आलोचना कर रहे हैं।
1: अच्छा, ऐसे लोग भी हैं? भला साफ सफाई के लिए कोई किसी की आलोचना कैसे कर सकता है?
0: हाँ, दरअसल कुछ लोगों ने इंटरनेट पर लिखा कि ये सब ढोंग है और दिखावा है। साफ सफाई की इतनी चिंता है तो अपने घरों में करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जापानी पुरुष घर के कामों में हाथ कम ही बटाते हैं।
1: लेकिन मैंने देखा है कि जापान में लोग अपना कूड़ा साथ ले जाते हैं, तो ये एक संस्कृति की तरह है और इसमें कोई बुराई तो नहीं?
0: बिल्कुल सही कहा। मैंने भी जब नकारात्मक टिप्पणियां देखी तो बात कुछ हजम नहीं हुई। बहरहाल चलते हैं आज के हमारे लक्ष्य की ओर और लेते हैं श्रोताओं के पत्र।
1: जी, तो सबसे पहले उठा रही हूँ ये पत्र जो राम कुमार नीरज जी का है, आरा बिहार से। लिखते हैं, मुझे भारत और जापान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को समझने में गहरी रुचि है। मैं इन विषयों को आत्मसात करने और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। इसी दिशा में मैंने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो तैयार किया है।
0: अरे हाँ, राम कुमार जी ने इसका उल्लेख पहले भी किया था।
1: जी, लिखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने परमाणु शक्ति के इतिहास, हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी और भारत के परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में मानवता के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मेरा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि लोगों को सोचने और संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित करना है। मैं भविष्य में भी भारत जापान संबंधों, सामाजिक मुद्दों और वैश्विक विषयों पर जागरूकता फैलाने का प्रयास करता रहूंगा।
0: राम कुमार जी, आपके प्रयास वाकई काबिले तारीफ हैं। दरअसल आपका पत्र मिलने के बाद मैंने खुद इसे देखा और जितने विस्तार से इसमें न केवल जापान बल्कि भारत के पोखरण परीक्षण के बारे में बताया गया है वो काफी ज्ञानवर्धक है। और अब देखिए, ये अगला पत्र है केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी का। लिखते हैं, आपके वेब पेज पर जापानी दल ने विकसित की आर्कटिक समुद्री बर्फ की मोटाई का अनुमान लगाने की विधि शीर्षक जानकारी पढ़ने को मिली, जो कि विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। जापानी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये नई विधि न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में भी एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। देखा जाए तो अब तक आर्कटिक समुद्री बर्फ की स्थिति का आकलन मुख्यतः उसके विस्तार के आधार पर किया जाता रहा है, जबकि उसकी वास्तविक मात्रा और स्थिति को समझने के लिए मोटाई का सटीक अनुमान लगाना भी उतना ही आवश्यक है। मेरी राय में इस चुनौती का समाधान खोजते हुए जापानी शोधकर्ताओं ने उपग्रह आंकड़ों, मौसम संबंधी जानकारी तथा बर्फ की गति के विश्लेषण को एक साथ जोड़कर एक अभिनव पद्धति विकसित की है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये शोध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभावों को सबसे पहले और सबसे तीव्र रूप में अनुभव कर रहा है। समुद्री बर्फ की मोटाई में होने वाले सूक्ष्म बदलावों का समय रहते पता लगाना भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उनके प्रति नीतिगत निर्णय लेने में सहायक होगा। यदि ये तकनीक व्यापक स्तर पर अपनाई जाती है तो बेशक ये ग्लोबल वार्मिंग संबंधी अध्ययनों की सटीकता बढ़ाने के साथ साथ समुद्री बर्फ में कमी के शुरुआती संकेतों की पहचान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: सुरेश जी, लगता है आपको इस विषय में की काफी जानकारी है, नहीं तो इतनी गहराई तक इस खबर का विश्लेषण कर पाना संभव नहीं। आपने काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है और आशा करते हैं कि जापान का यह शोध आगे चलकर इस पृथ्वी को बचाने में अहम योगदान देगा।
0: सही में सुरेश जी के इस क्षेत्र में काफी दिलचस्पी भी लगती है। हर सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, तभी समस्त मुद्दों को समझा जा सकेगा।
1: जी, अब ये अगला पत्र है पथिक जैन जी का, जयपुर से। लिखते हैं, जापान में ऑटो रिक्शा के अंक को सुनकर ऐसा लगा कि अब जापान भी भारत के और निकट आ रहा है। जापान में पिछली शताब्दी

0: शताब्दी के 5वें दशक में ऑटो रिक्शा चलते थे और अब लगभग 7 दशक बाद पुनः लौट रहे हैं। इसे समय की मांग कह सकते हैं, जहां महंगी कारें, सड़कों पर यातायात की भीड़ आदि को देखते हुए ऑटो रिक्शा कम दूरी के लिए परिवार के साथ घूमने में दक्षिण एशिया में लोकप्रिय है। होरिकोशी जी के ऑटो का आधा भूरा रंग और ऊपर का भाग क्रीम रंग का, जो ऐसा लगता है जैसे कॉफी के ऊपर क्रीम और झाग हो। आकर्षक रंग लगा।
1: पथिक जी, टिप्पणी के लिए धन्यवाद। जापान में साइकिल का भी बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर मौसम खराब हो और बच्चों को लाना ले जाना हो तो ऐसे समय में ये ऑटो काफी सुविधाजनक हो सकता है। मेंटेनेंस भी कम है। साइकिल से तो बेशक महंगा है, लेकिन कार रखने की तुलना में सस्ता है।
0: जी, फेसबुक पर भी कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उमेश कुमार शर्मा जी कहते हैं, जापान में भी ऑटो होता है, ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने हमें चालक महोदया से मिलवाया, मिलकर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने हिंदी में आपसे बात की, ये जानकर आश्चर्य भी हुआ।
1: उमेश जी, होरिकोशी जी हमारी हिंदी सेवा के ही सदस्य हैं और वे धारा प्रवाह हिंदी बोलती हैं। भारत में भी रह चुकी हैं, इसलिए भी उन्हें ऑटो रिक्शा से लगाव है। और देखिए रंजना जी, कई और श्रोताओं ने भी इस रिपोर्ट को फेसबुक पर सराहा है, तो क्यों ना उनके नाम ले लेते हैं। ये हैं हेमराज, नवीन शर्मा, राघवेंद्र नौटियाल, लाल बाबू पांडे, मृणालिका ओझा, अशोक मोजित्रा, राजेश गिरी, मुरारी शाह। और विजय सुरलकर जी ने लिखा था कि वे जरूर सुनेंगे, तो उम्मीद करते हैं आपने सुन लिया होगा। आप सबका दिल से आभार।
0: अब देखिए, दुर्गेश नागनपुरे जी का पत्र है, जिसमें उन्होंने 21 जून 2026 के चैरी के देश से के बारे में लिखा है कि इस कार्यक्रम में योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी मियोको जी से बातचीत और श्रोताओं के पत्रों के उत्तर बहुत ही मनभावन लगे।
1: दुर्गेश जी, धन्यवाद सुनने के लिए और हमें लिखने के लिए।
0: श्रोताओं, अब पेश है आओ पकाए जापानी खाना, जिसमें आज हम बनाना सीख रहे हैं माकी सुशी, यानी सुशी के रोल।
2: दोस्तों, स्वागत है आपका आओ पकाएं जापानी खाना कार्यक्रम में। आज हम बनाना सिखाएंगे माकी सुशी, यानी सुशी के रोल।
3: और ये व्यंजन सिखाने के लिए आज भी हमारे साथ हैं पाकला विशेषज्ञ अकिको वातानाबे।
4: कोन्निचिवा, वातानाबे अकिको देसु। क्यों गो शोकाई सुरु माकी सुशी वा
2: नमस्कार, मैं हूँ आकिको वातानाबे। आज हम बनाएंगे माकी सुशी, यानी सुशी के रोल। किंडरगार्टन या स्कूल में बच्चों का पहला दिन मनाने के लिए अक्सर ये व्यंजन बनाया जाता है, या फिर बाहर खाने के लिए लंच का डिब्बा ले जाना हो तो भी ये व्यंजन बढ़िया है। इसे बनाने के लिए सब्जियों, मछली और दूसरी सामग्री को चावल की परत और नोरी यानी सूखी समुद्री घास में लपेटते हैं। आज हम डिब्बा बंद ट्यूना मछली, सब्जियों और तामागो याकी ऑमलेट का इस्तेमाल करके सुशी के रोल तैयार करेंगे।
3: ये व्यंजन हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो सामग्री नोट कर लीजिए।
2: पहले सुशी मेशी, यानी सिरके वाले चावल बनाने की सामग्री। आपको चाहिए 300 ग्राम चावल, 2 कप या 400 मिलीलीटर पानी, और सुशी का सिरका बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच सिरका, 2 बड़े चम्मच चीनी और 1 छोटा चम्मच नमक।
3: अब नोट कर लीजिए सुशी रोल के अंदर बनने की सामग्री।
2: इसके लिए तैयार रखिए 100 ग्राम गाजर और उसे सिमसिमाते समय डालने के लिए 2 बड़े चम्मच चीनी, 1/4 छोटा चम्मच नमक और 1 कप या 200 मिलीलीटर पानी।
3: ऑमलेट के लिए आपको चाहिए 2 अंडे, 1 बड़ा चम्मच चीनी, सुर्खी भर नमक, 1/2 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच पानी और पकाने के लिए 1 छोटा चम्मच तेल।
2: इसके अलावा हमें चाहिए 1 खीरा, 70 ग्राम डिब्बा बंद ट्यूना मछली और सूखी समुद्री घास यानी नोरी की 4 परतें, जो 20 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई वाले चौकोर टुकड़ों में कटी हुई हों।
3: तो चाहिए अब व्यंजन बनाना शुरू करते हैं। पहले हम सिरके वाले चावल तैयार करेंगे।
2: चावल पहले

0: 早く混ぜてしまいます。
1: 寿司के सिरके को एक दो मिनट तक जल्दी जल्दी चावल में मिलाइए। इससे ज्यादा देर मिलाने से चावल के दाने टूटने लगेंगे।
2: जब सिरका सारे चावलों में लग जाए तब पंखे से हवा करके चावलों को ठंडा कर लीजिए।
1: अब सिरके वाले इन चावलों को चार बराबर हिस्सों में बांट लीजिए।
2: इसके बाद बारी है सुशी रोल में भरने वाली सामग्री बनाने की।
1: तो पहले गाजर छील लीजिए और फिर उनके पतले लंबे टुकड़े इस तरह काटिए कि हर टुकड़े का व्यास लगभग 1 सेंटीमीटर हो।
2: गाजर के टुकड़ों को एक डेगुची में रखिए, 200 मिलीलीटर पानी डालिए और मध्यम आंच पर रख दीजिए।
1: जब पानी उबलने लगे तब आंच कम कर दीजिए और ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकने दीजिए। 5 मिनट बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी और 1/4 छोटा चम्मच नमक मिलाइए। अब डेगची पर फिर से ढक्कन लगाकर और 7 मिनट तक पकने दीजिए।
2: 7 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए और गाजर के टुकड़ों को ठंडा होने दीजिए। इससे वो पानी का जायका सोख लेंगे।
1: इसके बाद हम तमागो याकी ऑमलेट बनाएंगे। तो पहले एक डोंगे में 1 बड़ा चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक, 1/2 छोटा चम्मच सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच पानी लेकर अच्छी तरह मिला लीजिए।
2: फिर एक अलग डोंगे में अंडे तोड़ लीजिए और उन्हें अच्छी तरह फेंट लीजिए।
1: अंडे फेंटते समय ज्यादा झाग बनाए बिना सफेदी और जर्दी को मिलाने की कोशिश कीजिए। अगर आप फेंटने के लिए चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके सिरों को बाईं से दाईं ओर आगे पीछे हिलाइए। इससे अच्छा मिश्रण तैयार हो जाएगा।
2: इसके बाद वो सामग्री अंडे में मिला दीजिए जो हमने पहले मिलाकर रखी थी।
1: अब एक फ्राइंग पैन को मध्यम आंच पर गर्म कीजिए और उसमें 1 छोटा चम्मच तेल सब जगह समान रूप से फैला लीजिए।
2: फिर अंडे का सारा मिश्रण एक साथ डाल दीजिए और जल्दी जल्दी चलाते जाइए।
1: जब अंडे का मिश्रण कुछ हद तक पक जाए तब फ्राइंग पैन का हत्था पकड़कर उसे अपने से दूसरी तरफ को झुकाइए ताकि अंडा दूसरे सिरे की ओर फिसल जाए। फिर इसे ऑमलेट की आकृति दे दीजिए और आंच कम करके अच्छी तरह पका लीजिए।
2: जब ऑमलेट ठंडा हो जाए तब उसके 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले लंबे पतले टुकड़े कर लीजिए।
1: इसके बाद खीरे की बारी। खीरे को भी गाजर और ऑमलेट की तरह पतले लंबे टुकड़ों में काट लीजिए।
2: अब डिब्बा बंद ट्यूना मछली को डिब्बे से निकालकर एक छलनी में डाल दीजिए और उसका पानी जलने दीजिए। इसके साथ ही सुशी रोल में भरने की सारी सामग्री तैयार है।
1: अब आया इस व्यंजन का सबसे जरूरी हिस्सा। तो पहले से कुछ चीजें तैयार रखिए। हमें चाहिए एक डोंगा पानी, एक साफ तौलिया और एक माकिसु यानी सुशी रोल बनाने की बांस की छोटी चटाई।
2: तो पहले चटाई या कपड़े पर नोरी यानी सूखी समुद्री घास की एक परत रखिए। नोरी की चमकीली सतह नीचे की तरफ होनी चाहिए।
1: इसके बाद नोरी पर सिरके वाले चावल बिछाएंगे।
2: अब सिरके वाले चावलों के 4 हिस्सों में से एक उठाइए और उसे नोरी पर रख दीजिए।
1: चावलों को नोरी पर समान रूप से फैलाना जरूरी है।
2: सिरके वाले चावल नोरी पर फैलाने के बाद उस पर बाकी सामग्री रखेंगे।
1: सारी सामग्री सिरके वाले चावलों के बीचों बीच कतार से रखनी है
2: और नरम सामग्री पहले रखनी है। चावल के बीचों बीच बाईं से दाईं तरफ चूना मछली की 1 सेंटीमीटर मोटी कतार बनाइए और फिर उसके बगल में ऑमलेट के टुकड़ों की कतार रखिए।
1: मछली और अंडे के ऊपर रख दीजिए गाजर और खीरे की कतारें और अब बारी इन्हें नोरी में लपेटने की।
2: सुशी बनाने की चटाई या कपड़े को अपने पास वाली सिला दोनों अंगूठों से पकड़कर उठाइए।
1: बाकी उंगलियों से सामग्री को अच्छी तरह पकड़े रहिए और फिर चटाई का अपने पास वाला सिरा दूर वाले सिरे के ऊपर ढक दीजिए। इससे चावल भरी नोरी का बेलनाकार रोल बन जाएगा।
2: रोल को थोड़ा आगे पीछे हिलाकर उसकी आकृति ठीक कर लीजिए।
1: जहां नोरी के दोनों सिरे मिलते हैं उस हिस्से को नीचे की ओर रखिए।
2: अब हर रोल को

0: बराबर गोल्ड कलों में काट लीजिए।
1: दोनों तरफ से सुशी के अंदर भरी सामग्री का सुंदर लाल, पीला और हरा रंग दिखाई दे रहा होगा।
0: लीजिए, माकी सुशी तैयार है।
2: माकी सुशी, इकागा देशिता का? नोरी गा ते नी हाइरा नाई बाई वा।
1: तो दोस्तों, क्या आप ये सुशी रोल अपनी रसोई में बनाकर देखना चाहेंगे? अगर आपके पास नोरी ना हो तो आप पतला ऑमलेट बनाकर उसमें भी सारी सामग्री लपेट सकते हैं। ऐसे रोल भी स्वादिष्ट लगते हैं, और इनके लिए ऑमलेट आप तमागो याकी ऑमलेट वाले मिश्रण से बना सकते हैं। तो ये व्यंजन ज़रूर बनाकर देखिएगा। इन्हें आप आसानी से पार्टी या दूसरे आयोजनों में ले जा सकते हैं और बिना हाथ गंदे किए मज़े से खा सकते हैं।
3: रंजना जी, माकी सुशी बनाने में काफी जटिल है, लेकिन इसमें पसंदीदा सामग्री डाल के अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं ना?
4: हाँ, मैं तो केवल खीरा डाल के ही बना लेती हूँ।
3: अच्छा, हाँ, खीरे वाली तो अच्छी है ना, गर्मियों में खासकर बहुत अच्छी है। और देखिए, आज के कार्यक्रम में नीमी जी की आवाज सुनी ना, कितने सालों बाद और वो भी इस समय अपने सपने को साकार करने की दिशा में व्यस्त है ना
4: जी।
3: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम, और अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। फिर होगी मुलाकात, तब तक अनुमति दें वायला खवानों को
4: और रंजना सिंह को।
3: सायनारा, नमस्कार।

0: और अदरक काटेंगे।
1: हरी प्याज को आखिरी सिरों से बारीक गोल गोल टुकड़ों में काट लें। इन्हें किसी प्याले या छोटी प्लेट में डालकर मेज पर रख दें। अब अदरक को छीलकर लंबाई में बारीक टुकड़ों में काट लीजिए।
0: रेशों के रुख पर उन्हें बारीक टुकड़ों में काट लें। जब आप अदरक के टुकड़े बना लें तो उन्हें भी किसी छोटे प्याले में रख लें। सजावट के लिए सुर्ख मिर्च पाउडर को एक अलग छोटे प्याले में रख दीजिए। सोया सॉस को किसी प्याले या बोतल में डालकर मेज पर रख दीजिए। अब हम आज का मरकजी जुज नमकीन महलूल में डिब्बा बंद मैकरल को इस्तेमाल करने के लिए तैयार करेंगे। डिब्बा बंद मैकरल कई जायकों में दस्तियाब हैं, मीसो, टमाटो, तेल वगैरह। आज की तरकीब के लिए हम नमकीन महलूल वाली मैकरल तजवीज़ करेंगे।
1: डिब्बे में से नमकीन महलूल समेत तमाम अज्जा एक गहरे प्याले में निकाल लें। नमकीन पानी को न फेंकें क्योंकि इसे उमामी जायके के साथ पैक किया गया है। इसमें एक चम्मच रख दीजिए, इस तरह से लोग मेज पर से खुद ले लेंगे। तैयार किए गए सजावट के अज्जा, सोया सॉस और हर एक फर्द के लिए चार इजाफी प्याले भी रख दीजिए। आइए अब उदोन डुबोकर खाने के लिए डिपिंग सॉस तैयार करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी मैकरल एक प्याले में डालकर इसमें थोड़ा सा नमकीन पानी भी शामिल कर लें। हसबे जायका हरी प्याज और अदरक भी डाल दीजिए। अगर आप सॉस का जायका चटपटा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी सुर्ख मिर्च भी शामिल कर लें। थोड़ी सी सोया सॉस भी डाल लीजिए। आपका डिपिंग सॉस तैयार है।
0: जब आप सब कुछ तैयार कर चुके हैं तो उदोन को गर्म करें। एक बड़े पॉट या बर्तन का इंतखाब करें जिसे मेज पर पेश किया जा सके। इसमें गर्म पानी डालें और तेज आंच पर गर्म कर लें। आज हम मार्केट में दस्तियाब पके हुए उदोन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप खुश्क या फ्रीज किए हुए उदोन का इंतखाब भी कर सकते हैं। आपके इलाके में जो भी आसानी से दस्तियाब हो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई मुख्तलिफ किस्म के नूडल्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि इन नूडल्स को पकाने के तमाम हिदायत पर अमल करें। अगर उदोन दस्तियाब ना हो तो आप इन्हें आटे और पानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको दरकार होगा 300 ग्राम आटा, एक खाने का चम्मच नमक और 150 मिलीलीटर गर्म पानी। एक प्याले में आटा डालें, नमक और पानी के आमेजे को इसी प्याले में डालें और हाथ से गूंद लीजिए। जब आटा एक गेंद की शक्ल इख्तियार कर ले तो इसे प्लास्टिक के एक बैग में डालकर 30 मिनट के लिए रख दें। आटे को निकाल लें, वो सतह जहां उदोन बनाने हैं उस पर खुश्क आटा छिड़क दें और आटे को एक बारीक शीट की शक्ल में बेल लें जिसकी मोटाई 3 मिलीमीटर हो। नूडल्स को आसानी से काटने के लिए आटे की तह बनाकर इसे 3 मिलीमीटर चौड़ी पट्टियों में काट लीजिए। एक बड़े बर्तन में पानी उबाल लें और उसमें नूडल्स को 8 से 10 मिनट तक पका लीजिए। इस तरकीब को मजीद तफसीलात के लिए हमारे जापानी खाने पकाएं की वेबसाइट पर मौजूद ते उची उदोन यानी हाथ से बने उदोन नूडल्स की तरकीब मुलाहिजा कीजिए। उदोन किसी भी किस्म का हो इसे खाने से फौरी पहले गर्म कीजिए। इस बात का यकीन कर लें कि तमाम अफराद मेज पर मौजूद हों और गर्म पानी बर्तन में उबल रहा हो, फिर इसमें उदोन डालें।
1: उबलते हुए पानी में उदोन को 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। जब उदोन गर्म हो जाए तो मेज पर एक तपाई रखें और उदोन वाला बर्तन इसके ऊपर रख दीजिए।
0: हिपारी उदोन का मतलब है उदोन नूडल को खींच कर निकालना। हिपारी उदोन खाने के लिए हर फर्द को बराह रास्त बर्तन में से उदोन खींच कर निकालने होते हैं, इसी वजह से इस पकवान को ये नाम है। खाने के वक्त गरम गरम उदोन को एक डिश में निकालकर डिपिंग सॉस में डुबोकर खाते हैं।
1: अब हम काया की हॉटपॉट तैयार करेंगे। डिब्बा बंद मैकरल इस्तेमाल की गई काया की हॉटपॉट की तरकीब चार अफराद के लिए है। अज्जा नोट कर लीजिए। एक डिब्बा नमकीन पानी वाली मैकरल जिसका वजन 200 ग्राम हो, 4 कप या 800 मिलीलीटर पानी, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 150 ग्राम पालक और 250 ग्राम चीनी बंद गोभी, या आप 400 ग्राम वजन में अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक टुकड़ा अदरक। तो आइए पकाना शुरू करते हैं। पहले पालक काटेंगे, पालक की जड़ें काट लें और फिर इन्हें धोकर 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में काट लीजिए।
0: चीनी बंद गोभी को 5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लें जो कि पालक की लंबाई के बराबर हो। फिर इसके सफेद डंठल वाले हिस्से को 1 सेंटीमीटर चौड़ी और पत्तों को 2 सेंटीमीटर चौड़े पत्तों में काट लें। फिर अदरक को छीलकर कद्दूकस कर लीजिए।
1: इस बात का यकीन कर लें कि अदरक को रेशों की मुखालिफ सिम्त में कद्दूकस किया जाए, वरना अदरक के रेशे बहुत लंबे और बारीक हो जाएंगे। फिर डिब्बा बंद मैकरेल खोल लीजिए। अब हॉट पॉट बनाने के लिए तमाम अज्जा तैयार हैं।
2: このかやきという料理は一人分ずつ作る鍋です。小さな鍋に一人分の材料
0: を。かやき एक फर्द के लिए हॉट पॉट पकवान है। एक छोटे बर्तन में एक फर्द के लिए कायाकी तैयार करने के तमाम अज्जा डालें और पकाना शुरू करें।
1: कहा जाता है कि कायाकी लफ्ज के शुरू की आवाज का मतलब जापानी जबान में काई या घूंगा मछली है। माजी में बड़ी सीप जैसे स्कैलप्स, सदफी मछली काया की हॉट पॉट पकाने के लिए मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, इसी वजह से इसका ये नाम पड़ गया। आजकल ये सीप शाजो नादिर ही इस्तेमाल होते हैं और निस्बतन छोटे बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। तैयारी के लिए एक छोटे बर्तन में 1 कप पानी लें। इसमें डिब्बा बंद मैकरल का 1/4 हिस्सा नमकीन पानी के साथ डालें। मैकरल के टुकड़ों को छोटे छोटे अज्जा में तोड़ लें। आधा खाने का चम्मच सोया सॉस शामिल करें। लीजिए, आपका सूप तैयार है। इसे दरमियानी आंच पर गर्म कर लीजिए।
0: जब पानी उबलने लगे तो उनमें अज्जा शामिल करें। चीनी बंद गोभी की सफेद डंठल की पट्टियों से शुरू करें क्योंकि ये पकने में वक्त लेती है। 2 मिनट के बाद चीनी बंद गोभी और पालक के पत्तों की पट्टियों को शामिल करें और 1 मिनट तक पकाएं। सब्जियां गल जाएं तो काया की तैयार है। इसी तरीके से 4 अफराद के लिए अलग अलग प्याले तैयार कर लीजिए। खाने के वक्त बर्तन में से कुछ अज्जा एक प्याले में निकालें और अदरक शामिल करें। डिब्बा बंद मैकरल का नमकीन पानी जायके और खुशबू का एक बेहतरीन जरिया है, इसीलिए हमें अलग से दाशी या सूप तैयार करने की जरूरत नहीं। आप इसमें सब्ज पत्तों वाली सब्जियों, मशरूम, बैगन और किसी भी दस्तियाब सब्जी के बारीक स्लाइसेस शामिल कर सकते हैं, क्योंकि काया की गजाई से भरपूर और डिब्बा बंद मसनुआत के जखीरे और दस्तियाब सब्जियों से आसानी से तैयार की जा सकती है। इसी वजह से पकाने का ये तरीका खेती बाड़ी के मसरूफ मौसम में लोगों के लिए बहुत मददगार हुआ करता था। आज हमने डिब्बा बंद मैकरल इस्तेमाल करते हुए तवील अरसे से पसंद की जाने वाली शिमाल मशरकी जापान की 2 तरकीब मुतारिफ कराई और आखिर में मुहतरमा वतनाबे अपने ख्यालात का इजहार करती हैं।
2: कांजुमे には保存食とか非常食というイメージがあるかもしれませんが、加工技術の進歩で
0: बहुत से लोग डिब्बा बंद अशिया को महफूज गिजा या हंगामी हालात में खाई जाने वाली गिजा समझते हैं, लेकिन महफूज करने के अमल की टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से डिब्बा बंद खुराक मजेदार और गजाइयत से भरपूर हो गई है। इन्हें अपने रोजमर्रा के खानों में उमदगी के साथ इस्तेमाल करें और अपने खाना पकाने की सलाहियत में इजाफा कीजिए।
1: आइए सामईन आज की तरकीब एक बार फिर दोहरा लें। 4 अफराद के लिए ये अज्जा दरकार होंगे। 800 ग्राम उदोन नूडल्स, 200 ग्राम या 1 डिब्बा नमकीन महलूल वाली मैकरल, 4 डंडियां हरी प्याज, 1 टुकड़ा अदरक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी सोया सॉस।
0: हरी प्याज को गोल टुकड़ों में काट लें। अदरक को रेशों के रुख से लंबाई में बारीक काट लें। हर एक को छोटे प्याले में रख दीजिए। सुर्ख मिर्च को एक छोटी प्लेट में और सोया सॉस को उसके खास बर्तन या एक प्याले में डाल लें। डिब्बा बंद मैकरल के तमाम अज्जा को एक निस्बतन गहरी प्लेट में निकाल लें। अब इन्हें मेज पर रख दीजिए। हर फर्द अपने प्याले में मैकरल, नमकीन महलूल, अदरक और हरी प्याज डालकर खुद अपना डिपिंग सॉस तैयार करेगा और जायके के लिए थोड़ी सी सोया सॉस और सुर्ख मिर्च भी इजाफा करेगा। खाने से पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उदून को 2 से 3 मिनट तक गर्म कर लीजिए। एक तपाई पर मेज के वस्त में रखें और गर्म उदोन वाला बर्तन इस पर रख दीजिए। बर्तन से गर्म उदोन निकालिए और सॉस में डुबोकर खाइए।
1: 4 अफराद के लिए कायाकी तैयार करने के अज्जा नोट कर लीजिए। आपको जरूरत होगी

0: एक डिब्बा या 200 ग्राम नमकीन महलूल के साथ डिब्बा बंद मैकरेल, 4 कप या 800 मिलीलीटर पानी, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 150 ग्राम पालक, 250 ग्राम चीनी बंद गोभी और एक टुकड़ा अदरक। पालक की जड़ें काटें और इसे 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में काट लीजिए। बंद गोभी को 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में काटने के बाद इसके सफ़ेद डंठल वाले हिस्से को 1 सेंटीमीटर और सब्ज पत्तों वाले हिस्से को 2 सेंटीमीटर चौड़े टुकड़ों में काट लें। अदरक को छीलकर रेशों की मुखालिफ सिमत से कद्दूकश कर लीजिए। एक फर्द के लिए एक छोटे बर्तन में 1 कप पानी, 1/4 नमकीन महलूल के साथ डिब्बा बंद मैकरेल, आधा खाने का चम्मच सोया सॉस डालकर दरमियानी आँच पर पकाइए। जब आमेजा उबलने लगे तो 1/4 सब्जियां बर्तन में डाल लें। सबसे पहले चीनी गोभी का सफ़ेद डंठल वाला हिस्सा डालकर 2 मिनट तक पकाएं, फिर सब्ज पत्तों वाला हिस्सा और पालक डालकर 1 मिनट मजीद पकाएं। जब सब्जियों में अच्छी तरह उबाल आ जाए तो ये डिश तैयार है।
1: और अब वक्त हुआ है खाना पकाने से मुतालिक मालूमात देने का। आज हम इर्तकाई मराहिल तय करती डिब्बा बंद अशिया के बारे में बात करेंगे। साल 2011 में आने वाले मशरकी जापान के हौलनाक जलजले के बाद डिब्बा बंद अशिया ने एक नए अंदाज से अपनी जानिब तवज्जो हासिल की। साने के बाद डिब्बा बंद खाने हंगामी हालात की एक मकबूल खुराक बन गए हैं और लोगों ने इनके जायके को एक बार फिर दरियाफ्त किया और उन्हें घर में बनाए जाने वाले खानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
0: जापान में डिब्बा बंद खाने बहुत महंगे हुआ करते थे और आबादी का एक मखसूस तबका ही इन्हें इस्तेमाल कर सकता था। 1923 में आने वाले अजीम कांतो जलजिले के बाद बहुत से डिब्बा बंद खाने हंगामी खुराक के तौर पर तकसीम किए गए और अवामुन्नास में मकबूल हुए। दूसरी आलमी जंग के बाद गजाई किल्लत के दौरान डिब्बा बंद खाने बहुत कारामद साबित हुए, लेकिन जब जापान ने मुल्क गिर तरसील का जाल फैलाया और ताज़ा खुराक की दस्तियाबी सहल हो गई तो डिब्बा बंद खानों की तलब में कमी आ गई।
1: 6 साल कबल आने वाले जलजले के बाद इन्हें एक बार फिर फरोग मिला और उनका इर्तका जारी है। आजकल सुपरमार्केट्स में बड़ी मुनफरद डिब्बा बंद मसनूआत, मसलन जापानी रोल ऑमलेट और डिब्बा बंद ब्रेड भी फरोख्त हो रही है। हाल ही में नित नए नफीस खाने जैसा कि धुआं लगे ऑयस्टर्स, जड़ी बूटियों के जायके वाली भुनी मुर्गी और दीगर खाने जो पुरताश डिश के तौर पर खाए जाते हैं काफ़ी मकबूल हैं। जापान में बिकने वाले ज़्यादातर डिब्बा बंद खानों की कीमत तकरीबन 1 से 4 डॉलर तक होती है, लेकिन महंगे डिब्बा बंद खानों की कीमत $45 भी हो सकती है।
0: जापान में डिब्बा बंद खानों के कई बार खुल चुके हैं जहां आप मशरूबात के साथ कई इकसाम के डिब्बा बंद खानों से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। मेन्यू की लिस्ट में सिर्फ डिब्बा बंद खाने होते हैं। बार के शेल्फ किसी लाइब्रेरी के बुक शेल्फ की मानिंद रंग बिरंगे डिब्बा बंद खानों से भरे होते हैं जहां से आप अपने पसंदीदा डब्बे का इंतखाब कर सकते हैं। सामिन अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम जापानी खाने पकाएं। उम्मीद है कि अगली मर्तबा भी आप हमारे साथ होंगे।
1: हामिद, मेरे दिमाग में तो आज का प्रोग्राम सुनकर डिब्बा बंद खानों से पकवान बनाने के नित नए ख्याल आने शुरू हो गए। अब तक तो मैंने इनकी कुछ ही अकसाम इस्तेमाल की थी।
0: चले जनाब, देर आया, दुरुस्त आया, ख्याल तो आया। खैर, जापान में सोफिया मैंने देखा है कि डिपार्टमेंट स्टोर्स में अलग से डिब्बा बंद खानों का एक हिस्सा बना हुआ होता है जिसे देखकर अंदाजा होता है कि जापान में इनका कितना इस्तेमाल है।
1: जी, और मैं भी यही देख कर हैराना चाहती हूँ कि इतनी बेशुमार अकसाम होती हैं उनकी। यहाँ तक कि जापानी शोगस यानी साले नौ के पकवान के लिए भी अब केन में ये खाने दस्तियाब में होते हैं।
0: कमाल है जनाब। आगे खैर देखें कि इन डिब्बा बंद खानों का इर्तका कहाँ तक होता है। खैर, ये बताएं सूफिया कि आप कौन कौन से डिब्बा बंद खाने इस्तेमाल करती हैं?
1: हमें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ टूना मछली का डिब्बा। अच्छा। टमाटर, स्वीट कॉर्न, बीन्स, मिक्स फ्रूट वगैरह। عام طور پہ جو استعمال ہوتے ہیں گھر میں. اس کے علاوہ مجھے ایک سب سے اچھا یہ لگتا ہے کہ ہر موسم میں یہاں ڈبہ بند آم کے سلائسز مل جاتے ہیں, جس سے میں شیک یا مینگو سوس وغیرہ بنا لیتی ہوں.
0: آم بھی آپ نے ڈال ہی دیا,
1: ڈال ہی دیا کیونکہ مجھے بہت پسند ہے.
0: خیر بھائی جناب, آپ تو کئی طرح کے ڈبہ بند کھانوں سے مستفید ہوتی رہتی ہیں, تو ہمارے سامعین کو یہ تو بتا دیں کہ آج کی ترکیب میں استعمال کی گئی یہ نمکین محلول والی ڈبہ بند میکریل مچھلی کے نیم البدل کے طور پر کیا استعمال کریں. اب یہ ہر جگہ تو مل نہیں سکتی.
1: جی حامد, آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر جگہ تو نہیں مل سکتی. ہو سکتا ہے کسی بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور وغیرہ میں مل جائے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی ایسی مچھلی جس میں کانٹے باریک باریک کانٹے کم ہوں, انہیں ابال کر کایا کی ہاٹ پاٹ یا ہپاری ادون کے ڈش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن مچھلی ابلا ہوا پانی پھینک دیں کیونکہ اس میں مہک ہوتی ہے. ترکیب میں استعمال کیے ہوئے نمکین محلول کے لیے ہم چکن کیو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. جب اس میں ہم مچھلی ڈال کر ابالیں گے تو اس کا ذائقہ اور خوشبو اس سوپ میں شامل ہو کر داشی کا مزہ دے گا. جب ہم ہاٹ پاٹ بناتی میں جب ہاٹ پاٹ بناتی ہوں تو زیادہ تر سامن مچھلی یا سفید گوشت والی کوئی بھی مچھلی استعمال کرتی ہوں.
0: اچھا کب بناتی ہیں ویسے؟
1: جی جی کبھی کبھی بناتی ہوں.
0: اچھا یہ بتائیں کہ سبزیاں تو عام طور پر ساری ہی آسانی سے مل جاتی ہیں.
1: جی لیکن اگر ہمیں چینی بند گوبھی کسی کو نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں ہے, عام بند گوبھی کافی مزے دار لگے گی کیونکہ میں دونوں ہی آزماتی رہتی ہوں.
0: کمال ہے جناب. چلیں خیر, امید ہے کہ آج کے یہ دونوں پکوان پر ہمارے سامعین ضرور تباہ آزمائی کریں گے.
2: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں.
1: جی سامعین, پروگرام آپ نے سنا, امیدیں ضرور پسند آیا ہوگا. ڈبہ بند کھانے تو ہمیشہ سے ہی مقبول ہیں, لیکن ان میں مستقل ارتقا جاری ہے. پہلے ان ڈبہ بند کھانے کا کچھ نہ کچھ بنانے میں مدد دینے کا تصور زیادہ تھا, لیکن اب تو مرکزی ڈش کے طور پر استعمال ہونے والے ڈبہ بند کھانے بھی دستیاب ہیں. ہمیں بتائیں آپ اپنے ملک میں دستیاب کون کون سے ڈبہ بند کھانے استعمال کرتے ہیں. اور اب ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.